0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ये प्रोग्राम अलहुदा इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया गया। प्रोग्राम के हवाले से खत लिखने के लिए पता नोट कीजिए, अलहुदा इंटरनेशनल 41 DMMS, नियर चिल्ड्रन पार्क, सिराजुद्दौला रोड, कराची। फोन नंबर 02134547710, 03005187599।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दिल मसाला।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 10 a.m. This transcript is brought to you by
4: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: जी कोर्ट रिकॉर्ड की वही आए वफाक सिंधु के जायज मुकम्मल आए जायज सुफराम करने लाए अमली कदम करें। सिंध के खूबसूरत एशिया के सब का वरी मंछर डंड भी सुकी वही। पान सईदाबाद में मंछर बचाओ ताज जो डंड के बहाली लाए मंछर बंद ते एहतजाज। मुजाहरीन चो तो पानी घटने सबब मच्छी जो नस्ल खत्म थी वो है। मुहाना बदाली जो शिकार आन पानी की सतह घटी 106 आरएल यानी 6 फुट रह वही। 3000 का वधिक इंसानी आबादी पीण तोड़े जरे पानी का महरूम आन। मंछर डंड में पानी की सतह के बहाल के वे। दाबे की पंपिंग स्टेशन ते बिजली की बंदिश सबब कराची के पानी की फरहमी मुअत्तल। वाटर कारपोरेशन के तर्जुमान चवण है दाबे की केड के ट्रांसफार्मर्स में फनी खराबी सबब शटडाउन किया वो। जबरी शटडाउन से दाबे की पंपिंग स्टेशन जा 21 मां 10 यूनिट्स बंद है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकन के पानी की फरहमी मुअत्तल है। बिजली मुकम्मल बहाल थियण के वक्त बाबत आत्मी जान फराहम न की हुई। नई माली साल की बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर महंगा थियण के इम्कान। जरिए मुजिब IMF पारा बजट में सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सेल्स टैक्स अड़ा सैकड़ों थियण के इम्कान है। इंदड़ माली साल में गाड़ियों के पोर्ट 40,000 तक महदूद करने की तजवीज। हाइब्रिड गाड़ियों से भी सेल्स टैक्स 8 का वधाए अड़ा सैकड़ों तक आने सकते तो। सोलर पैनल्स से भी सेल्स टैक्स 10 सैकड़ों का वधाए अड़ा सैकड़ों करने की तजवीज। इंदड़ माली साल की PSDP की मद में 1126 अरब रुपया रखने की तजवीज। GDP वाद जो हदफ 4 सैकड़ो रखने की तजवीज। इंदड़ माली साल की बजट लाए सालाना प्लान कोआर्डिनेशन कमेटी जो इजलास अज थो। एहसन इकबाल की सदारत में इजलास दौरान तरक्याती बजट की मंजूरी डिनी वही। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो इजलास 3 जून से वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ सदायण जो इम्कान। FBR टैक्स उगाड़न में 868 अरब रुपये की घटताई के मुंह जी रो है। 12,095 अरब रुपये के अदब के मुकाबले में 11,027 अरब रुपया जमा थी सकया। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी की लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क में अमन अमान ए मजमू सिक्योरिटी सूरत हाल से गाल। घर वजीर मोहसिन नकवी वजीर आजम शहबाज शरीफ के ईद उल अज़हा के मौके से कयल सिक्योरिटी इंतजाम का आगाह गिलगित बस्तान में रितियल चूंड लाइ सिक्योरिटी इंतजाम बाबत ब्रीफिंग डिनी। मोहसिन नकवी चो चूंड अमल दौरान अमन अमान बरकरार रखने लाए जामिया सिक्योरिटी प्लान जोड़े वो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क में अमन इस्तकाम के क्याम लाए घर वजारत सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिश की वाकान। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो हुकूमत जमहूरी अमल लाए हर मुमकिन कदम ए सहकार जारी रखी। इसराइली फौज जो लिबनान में अहम जबल ए तारीखी अल शकीफ किले ते कब्जो। 26 साल का पोए बीहर इसराइली फौज लिबनान में गिरी वही। लिबनान के 2000 चौरस किलोमीटर इलाके से कब्जो कर वरतो। लिबनान की मीडिया जो चवण है नतिया जहाँ इलाका खाली करने लाए बमबारी कई वही। हमलों में रहायशी इमारतों के निशानों पड़ने सबब घर में निंड सुतल केतरा ही मानू शहीद। लिबनानी वजीर आजम पारा इसराइली कब्जे की मज़म्मत। अमरीकी सदर ट्रंप जो बीहर यूटर्न ईरान के तब्दील थियल सख्त तजवीज उमाने छो। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई है ट्रंप ईरान से मुआदे से जल्द फैसले बाद जहन तब्दील कर छो। ट्रंप ईरान के तब्दील थियल सख्त तजवीज उमानी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चो है जो असा चाहूं था वो ईरान का हासिल कर रहा हूं। ईरान एटमी हथियार न ठाहिण समेत एटमी बम खरीद न करण जी भी खातरी कराई आहे। मुआदे ते सही थींदे ही आबनाई हुर्मुज़ खोलियो वेंदो। असांखे का जल्दी न आहे, सुठो मुआदो चाहियूं था ऐं मुआदे जे वेझो बि आहियूं। ईरान सां सुठी डील न थी त ॿीहर ऑपरेशन करणो पवंदो। अमरीका अबनाई हुर्मुज़ में नाकाबंदी ख़त्म करण वारे ऐलान सां फिरी वियो। अमरीकी जंग वारे वज़ीर पीटर हेक्सेट सिंगापुर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त अबनाई हुर्मुज़ जी नाकाबंदी बरक़रार आहे। ईरान में ॿीहर फ़ौजी कार्रवाई करणी पई त कंदासीं, अहिड़ो मुआदो कबो जेको अमरीकी आवाम जे मुफ़ाद में हूंदो। ईरान सां मुआदो थियण खां पोइ अबनाई हुर्मुज़ खे खोलियो वेंदो। अबनाई हुर्मुज़ हिकु टूल फ्री रस्तो हूंदो जेको सॼी दुनिया इस्तेमाल करे सघंदी। ॿ ॾींहं अॻु अमरीकी सदर अबनाई हुर्मुज़ तां नाकाबंदी ख़तम करण जो ऐलान कयो हो। ईरानी फ़ौज वापारी बहरी जहाज़नि ऐं आयल टैंकर्स लाइ नई वार्निंग जारी करे छॾी। ईरानी फ़ौज जो चवण आहे त ईरान जी इजाज़त खां सवाइ हुर्मुज़ जे सफ़र जी कोशिश ख़तरनाक साबित थींदी। अबनाई हुर्मुज़ ते ईरान जो कंट्रोल मज़बूत आहे। ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाकर कालिबाब चयो आहे त अमरीका सां ठोस नतीजनि खां सवाइ को बि मुआदो न थींदो। ईरानी आवाम जे हक़नि जी ज़मानत न मिली त को बि मुआदो क़बूल न हूंदो। ईरान दुश्मन खे अज़ीम ऐं तारीख़ी जंग में पुठिते धके रहियो आहे। शहीद रबर हिकु मज़बूत ईरान जो बुनियादु रखियो।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती जहन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो मैं पागल हो जाएगा।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: போனகலந்து சாவுதே சோரா.
1: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
2: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
3: Khoobsurti hai jo asal raaz. Sirf D Skin Beauty Cream. In hame maujood vitamin E beads ai jadid micro beads formula awaji skin ke banaye nikhri ai chamakdar sirf bindi han mein dark spots ke kare khatam ai diye kudrati asli glow. D Skin Beauty Cream asli glow har diye jo show. A product by Biocon International Pakistan.
4: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है. अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा. जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत. तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमते सिंध.
5: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
6: वादी मेहरान सिंध की एक और पहचान
5: GAFM नेटवर्क
6: सिंध की आवाज.

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है. अनथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा. जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत. तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध.
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GFM 91.6.

0: कैसा महसूस होगा
1: उसे खो के जिसे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 11 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: खरानी बिरादरी जी बिंदुरन में कार हित करार था छेड़ो फायरिंग में बजना मार जी वया औरत जख्मी। मुख्तलिफ थाने जी पुलिस पहुंची दिन में फायरिंग बंद कराए। बई लाश तहवील में वठी जख्मी औरत के इलाज लाए शिकारपुर सिविल अस्पताल में दाखिल कयो। घोटकी वेझो गोठ लीमा घोटो भरसा फायरिंग। गोठानो नादिर अली सुंदरानी कतल। मकतूल के वारसन जो घोटा धुरते गोठाने के मारने जो इल्जाम। जवाबदारन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो।

पुलिस मूजिबि कुझु माण्हुनि खे शक जे बुनियाद ते हिरासत में वरितो आहे। वधीक जांच जारी आहे। फैज़गंज ऐं बरपासे में गैस्ट्रो वबाई शिकिल इख़्तियार करण लॻी। 30 खां वधीक मर्द ऐं औरतूं ॿार गैस्ट्रो में मुबतला, केतिरनि जी हालत गणतीअ जोगी। ऐं ठुलभर सां गुलशेर में कर्नाणी बिरादरी जे बिंदुनि में पैसनि जी देती लेती तां छेड़ो, 8 ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: और संगे मील उबूर इफ्तिता शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
4: वादी मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क।
1: वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार। आपका और मेरा साथ पूरे एक बजे तक का है। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कमेंट्स, मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू। अच्छा, हमारा पेज जिसके ऊपर इस वक्त पोस्ट एग्जैक्टली पोस्ट कर दी गई है GFM 88 के पेज के ऊपर, ठीक है। GFM 88 के पेज के ऊपर इस वक्त आपको पोस्ट मिल रही होगी, नजर आ रही होगी। पहली जिंदगी गुलजार है कि यहां इस पोस्ट के नीचे आप लोग कमेंट्स करेंगे, तो यहां से जो है ना आप लोगों के कमेंट्स को प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा। साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488, ठीक है। इसके ऊपर कॉल करने के बाद जो बंदा आगे गाना सुनाएगा वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा। सो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे जी कॉलर कहां से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। हेलो, SRH कैसे, ठीक ठाक?
2: बिल्कुल सहयत।
1: अच्छा मुझे बताएं, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: जी आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं।
1: फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं?
2: जी जी।
1: फर्स्ट टाइम तो नहीं सुन सकते, पहले भी सुनते मतलब पहले से ही सुनते आ रहे हैं आप?
2: नहीं नहीं, ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं।
1: अच्छा, ये वाला फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। चले जबरदस्त, कोई गाना है, गाना सुनाएंगे?
2: जी
1: सुना दे फिर।
2: सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन को हम दे सकेंगे, फिर भी वादा तू जो करे क्या।

0: हम तो छोटा सा है एक मेरा, तुझको हम वो दे सकेंगे।
1: आपने तो पूरा गाना ही बिगाड़ दिया। चले ये गाना प्ले करती हूँ, किसको डेडिकेट करेंगे?
0: बस जो सुनने वाले सबको डेडिकेट।
1: ओके जी, ये रहा गाना।

0: बनूंगा।
1: ओके आजकल वैसे अपोजिट चल रहा है यहाँ पे, मतलब फीमेल की लाइन होनी चाहिए थी कि तू जो करे प्यार मुझसे छोटा सा घर तुझको दूंगी। खैर नेक्स्ट कॉलर लेंगे, ये थोड़ा सा गाना सुन लें। चलो कॉलर को वेट नहीं करा दे, कॉलर लेते हैं। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
2: सरदर्द बात कर रही हूँ।
1: सरदर्द बात कर रही है, सरदर्द माइक सही करवा लिया फोन का? बड़ी खुली खुली आवाज आ रही है आज तो, खिली खिली खुली खुली खिली खिली। अच्छा सरदर्द वाकई सही करवाया है या खुद ही सही हो गया है? एक बार और फेंका है तो वो दोबारा सही हो गया?
2: नहीं नहीं,
1: ऐसा होता है ना कि जब हमारा घर में टीवी का जो है रिमोट नहीं चल रहा होता, हम उसको मार मार के चलाते हैं और मार मार के, मतलब मारने के बाद ना वो पहले से ज्यादा सही चल रहा होता है।
2: हाँ बिल्कुल
1: है ना।
2: हाँ।
1: बस ये जुगाड़ जुगाड़ है पाकिस्तानी आवाम के। खैर आप मुझे बताएं, गाना सुनाएंगी कोई?
2: सुना
1: दूँ,
2: गाना ही ना
1: बजा दूँ,
2: कोशिश करूँगी।
1: ओके पहले मुझे बता दे कौन सा गाना है।
2: दिल लेके अभी शबक का गाना।
1: कौन सा?
2: दिल लेके।
1: दिल लेके ओएसटी है कोई?
2: नहीं ओएसटी नहीं है।
1: अच्छा दिल लेके किस सिंगर का है ये?
2: नबील शौकत।
1: चलो ठीक है
2: सुना दो।
1: हाँ जी सुना दे प्लीज।
2: दिल लेके मेरा हाल तो पूछा की नैयां की तेरा के यार को दो गाने दीजिए।
1: वेरी नाइस वेरी नाइस। और कुछ कहना है सरदर्द, किसी को डेडिकेट करना है?
2: थैंक यू।
1: ओके जी थैंक यू। ये रहा गाना।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर रहो।
1: 11:45 AM. This time check is brought to you by.
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हेलो,
1: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से?
1: वादा कॉलोनी गुडुजरा कश्मोर से मोहम्मद हनीफ शाह।
0: मोहम्मद हनीफ शाह, कैसे ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, आप सुनाएं।
0: जी मैं भी बहुत अच्छी, इतने दिनों बाद कॉल कर रहे हैं, कोई अच्छा सा गाना होगा सुनाने के लिए?
1: आपके पास कॉल, आपके प्रोग्राम में इतनी जल्दी आसानी से थोड़ी लगती है।
0: इतनी आसानी से थोड़ी लगती है, चले अब लग गई है। आसानी से लगे या मुश्किल से लगे, अब तो लग गई
1: है
0: ना, अब तो लग गई है। तो अब मुझे बताएं कि कौन सा गाना सुना रहे हैं। हेलो,
1: अरे हेलो,
0: आवाज आ रही है?
1: हेलो
0: हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: हेलो
0: हेलो,
1: ओहो
0: ओहो, आवाज
1: हेलो हेलो
0: आवाज नहीं आ रही है भाई को। ओके जी, तो
1: हेलो
0: क्या किया जाए? हेलो
1: जी जी जी,
0: आवाज आई?
1: आवाज बिल्कुल ड्रॉप हो गई थी, मैंने कहा खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर।
0: मैंने एन वक्त तक इसलिए कॉल ड्रॉप भी नहीं की कि भाई को कहीं आवाज चली जाए, कहीं से तो चली जाए। अच्छा मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो सुना दे।
1: हिंदी या उर्दू,
0: जो दिल करे।
1: अच्छा, जो गाना हम सुनाएंगे वो आप चलाएंगे?
0: हाँ जी,
1: पक्की बात है,
0: पक्की बात है,
1: ठीक है। हिंदी में सुनाएं या उर्दू में? हिंदी में सुनाएं।
0: हाँ जी बिल्कुल, सुना दे, जो दिल करे वो सुना दे।
1: मान

0: आहे किनी दलियो तई मुखा उहे माण्हू त ॿुधाए किन जुदा तुई मुखा उहे माण्हू त ॿुधाए किन जुदा तुई मुखा।
1: अच्छा ये गाना किसका है?
0: मोहम्मद हनीफ क्या वक्त।
1: नहीं नहीं गाना किसका है, सिंगर का नाम क्या है?
0: गाना भी मेरा है और शायरी भी मेरी है, यूट्यूब पे आप मोहम्मद हनीफ का सॉन्ग सर्च करेंगे तो आ जाएगा।
1: अच्छा इस गाने
0: के चैनल पे भी कई मर्तबा चला है।
1: अच्छा इस गाने का नाम क्या है वैसे, क्या लिख के सर्च करूँ मैं?
0: बस मोहम्मद हनीफ का सॉन्ग लिखे आ जाएंगे खुद ना खुद।
1: चले मैं ये सर्च करती हूँ और मुझे मिल जाता है तो मैं प्ले करती हूँ। थैंक यू।
0: मिल जाएगा क्योंकि प्रोग्राम में तो आपके चैनल पे मैंने 2-3 मरतबा ये गाना चलवाया है।
1: मैं चलाती हूँ जी और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू।
1: थैंक यू।
0: फेसबुक पे जा रहा हूँ।
1: ओके जी जरूर जरूर, थैंक यू। और ये गाना मिल चुका है मुझे साथ साथ, सो इस गाने को हम प्ले करते हैं एंड इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर्स भी लेंगे।

अच्छा आज का जो टंग ट्विस्टर है ना वो कुछ इस तरीके से है कि जावेद ने झूलते झुमकों की झंझनाहट झट से जगा दी। ठीक है, ये कहना है जीम से टंग ट्विस्टर होगा आज का। जावेद ने झूलते झुमकों की झंझनाहट झट से जगा दी। ठीक है, ये कहना है। और एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि जावेद ने झूलते झुमकों की झंझनाहट झट से जगा दी। और इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे सारे लोग। दैट अगला जो हमारा सेगमेंट है दैट इज बोलो तो माने, उसमें आप लोग ये कह के दिखाएंगे और जो बंदा ज्यादा से ज्यादा सही सही बोलेगा वो

विन कर जाएगा इस सेगमेंट को. ठीक है, गाना सुनेंगे, सुनते सुनते जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 12 PM. This time check is brought to you by
4: Bank Al Habib, रिश्ता भरोसे का।
5: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
6: फौजी अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी फदाई देखे निशानों बनाने की दावा। ईरान के पासदारन इनकलाब चाहे तो ईरान के बेट सिर्क में टेलीकम्युनिकेशन टावर के हमले के जवाब में अमेरिकी फदाई देखे निशानों बनाया वो। कुवैती फौज चाहे तो मुल्क के दुश्मन के ड्रोन हमलन के नाकाम बनाया वो है।

0: आओगे इसी इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल लाइन पे मौजूद है, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो,
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, दोबारा से आ गई हो, कैसी हो दोबारा से? अच्छा मुझे बताओ सरदर्द के टंग टू शेर सुनाए, बोलोगी? बहुत ही स्पीड में गई हो सरदर्द, इतनी स्पीड कहाँ से पकड़ रही हो, कहाँ से आ रही है? मेरा शो सुन के आ रही है
1: जी, आपके शो सुन के तो मैंने बोलना सीखे।
0: अच्छा चले, मान फिर मान लेती हूँ, फिर सही कह रही होंगी आप।

0: 0300 0011 3488. एक और कॉलर. हेलो. ओ ये क्या हो गया. चलो एक और ट्राई. हेलो.
1: वालेकुम
0: अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: मैं नवीर.
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं. ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है ये वाली भी. वेरी बैड.

0: Okay, जी, next caller. Hello. Hello. कोई है? Hello. Okay, जी, आवाज नहीं आ रही है. 0300 11 34 88. एक और कॉलर. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: अस्सलाम वालेकुम भैया.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है, कहाँ से?
1: मैं से बात कर रही हूँ, पर आज नहीं बता से कौन बात कर रही
0: है. तूबा बात कर रही है?
1: या
0: तूबा कैसी है?
1: माशाल्लाह.
0: ओके, और मुझे ये बताओ तूबा के टंग ट्विस्टर सुना है? बोलोगी?
1: हाँ सुना है. आपकी आवाज सुन आ रही
0: है? अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो. ओके जी, आवाज नहीं आ रही. आवाज तो आ रही थी. एक और कॉलर लेते हैं जी. नेक्स्ट. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम
0: जी. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कौन?
2: अब्दुल कदीर.
0: कोई हेडफोन्स वगैरह लगाए?
2: जी अब्दुल कदीर.
0: अब्दुल कदीर, हेडफोन्स लगाए तो प्लीज निकाल दें. हेडफोन्स लगाए तो निकाल दें प्लीज.
2: हेडफोन
0: नहीं लगाए.

0: अच्छा टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगी? ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई। मैंने कहा था हेडफोन्स निकाल दें, निकाल दें, मेरी बात तो सुनता ही नहीं है कोई। अच्छा हेलो, वालेकुम सलाम, कौन किधर से?
1: रियाज डायो लाड़क्रमी से।
0: रियाज डायो कैसे, ठीक ठाक?
1: लाड़क्रमी से रियाज डायो।
0: ठीक है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, तबीयत सेहत ठीक है?
1: अल्लाह की करम में आ गई, कुछ मेरे दोस्त हैं।
0: बस दो शामिल करने। ओके जी, आते साथ ही कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे दोस्त के फिर वो इतनी लंबी लिस्ट है, कोई 10-12 लोग हैं। अच्छा ये ट्रेंड ना थोड़ा सा पुराना हो गया, इसको जरा चेंज करें ना प्लीज। अच्छा नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, कोई है? क्या हो रहा है ये? आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नेक्स्ट कॉलर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? कैसे भाई, ठीक ठाक है?
1: शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाओ?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बताइएगा क्या प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी आप प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं भाई?
0: प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, जबरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं कि टंग ट्विस्टर सुनाए, भूलेंगे?
1: जी अबाजी सुनाए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
0: मैं बता दूं?
1: जी।
0: अच्छा आपने कहना है कि जावेद ने झूलते झुमको की झनझनाहट झट से जगा दी।
1: जावेद ने झुमको से झंझट से जगा दी।
0: जावेद ने झूलते झुमको की झनझनाहट झट से जगा दी।
1: भाजी थोड़ा कन्फ्यूज आ रहा है, हो रहा है
0: कन्फ्यूजन आ रहा है थोड़ा। जावेद ने झूलते झुमको की झंझनाहट झट से जगा दी।
1: चलो थोड़ी कोशिश करते हैं, मैसेज में आपसे बात करते हैं, मैसेज कर देते हैं।
0: मैसेज पे बात करते हैं?
1: जी मैसेज करते थे आपको।
0: अच्छा मैसेज करते थे, मैं समझी मैसेज पे बात करते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। बहुत सारे लोगों को टंग ट्विस्टर मुश्किल लग रहा है, लेकिन आज हम चेक करेंगे कि किसने सही सही कहा है, अच्छा अच्छा कहा है, और वो आप लोगों ने देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा कि किसने ज्यादा अच्छा कहा है। सो हम ऐसा करते हैं कि मूव करते हैं एक अदद सॉन्ग की तरफ, और मैं प्ले करने जा रही हूँ एक अदद सॉन्ग। दिस सॉन्ग इज बाय कैफी खलील, और ये वाला गाना मैं प्ले कर रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई शो। इसको सुनिए, इंजॉय कीजिए और मेरा साथ दीजिए, स्टे ट्यून्ड।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemmé Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemmé Diamond Glow Bleach Cream।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
5: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: चाहे दिल झुकते की छूते तुमको की तब चलाती की।
1: क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है,
0: बोल भी गया मैं।
1: चलें जबरदस्त, और कुछ कहना है?
0: मैं तो अभी सो के होता हूँ, मैंने कहा टाइम हो गया, कॉल करके तभी कॉल लगे, सो के होता हूँ यकीन करेंगे।
1: चलें जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, और सो के उठे। अब मैं जो गाना प्ले कर रही हूँ वो सुने और एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें।
0: ओके
1: जी, अल्लाह हाफिज। गाना प्ले कर चुकी हूँ ब्यूटीफुल बाय द वन एंड ओनली राहत फतेह अली खान।

0: करते हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क सुनती आवाज।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमते सिंध।
5: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: गोश्त बाजार गरीबाबाद सखर खमीसा आए जुमो मिलना।

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मैं हूँ आरजी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी एक बजे तक का है जी. और आज का जो टंग ट्विस्टर कहा है वो सबसे ज्यादा अच्छा कहा है, हमेशा की तरह सरदर्द एंड हाफिज लखमीर एंड मोहम्मद सागर जो कि हमें ज्वाइन करते हैं और सुर वाला टंग ट्विस्टर कहके दिखाते हैं. तो इन तीनों ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला है और बहुत अच्छा कहा है. तो ये दिनों आज के सेगमेंट के विनर हैं. बोलो तुम्हारे सेगमेंट के लास्ट लकी कॉलर्स भी रिसीव करेंगे 03000113488.

0: तो लास्ट लकी कॉलर्स भी लाइन पे लेना शुरू करते हैं जी और चेक करते हैं लास्ट लकी कॉलर कौन होंगे कहाँ से। हेलो
1: बाजी रुखसार, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं भाई?
1: बाजी अजीज सोलंकी जो नीम प्रसाद।
0: अजीज सोलंकी भाई इतनी देर बाद कॉल कर रहे हैं, कैसे ठीक ठाक?
1: बस
0: ओके, मुझे बताएं लास्ट लकी कॉलर है, आज की अच्छी बात क्या है?
1: बाजी सुखी गाल है तो मानू कोशिश जे करे निमाद की पाबंदी करे पंज वक्त निमाद की पाबंदी करे निमाद का थोड़ा काम बची रहे।
0: चलिए जी जबरदस्त, थैंक यू। कुछ और कहना चाहेंगे? ओके जी, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ एक और सॉन्ग प्ले करेंगे और एक और कॉलर भी लेंगे। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: एजाज अली।
0: एजाज अली कैसे हैं, ठीक ठाक? प्रोग्राम सुनते हैं
2: जी? बिल्कुल,
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
2: रोजाना हम सुनते हैं आपका
0: प्रोग्राम। कॉल पहली दफा कर रहे हैं?
2: जी कॉल पहली दफा करते हैं, आप नंबर दीजिए।
0: चले जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि या टंग ट्विस्टर नहीं, सॉरी, आज की अच्छी बात क्या है? आज की अच्छी बात क्या है?
2: मौसम बड़ा अच्छा, हवा चल रही है।
0: मौसम अच्छा है, हवा चल रही है कहाँ पे?
2: जी
0: सखर में हवा चल रही है।
2: सखर
0: बेराज पे हवा चल रही है। ओके जबरदस्त, मौसम अच्छा है। चले जबरदस्त। जी बिल्कुल,
2: अब्दुल करीम सर, अब्दुल करीम सर, असलम
0: साहब। ओके
2: मरो मिलता
0: है। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: It's 1 PM. This time check is brought to you by
2: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: माननीय के हिरासत में वठने जी दावा फायदो करण चाहे तो जो अमेरिका है असा सा गड रहंदड़न जे लाय सुठो साबित थी दो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चवाए तो मुखालिफ सुकून सा वेहन ए पर कम कन आखिर में सब

ईरानी फौज जो अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी फजाई अड्डे के निशानो बनाने की दावा। ईरान के पासदारन इनकलाब चया है ईरान के बेटे में टेलीकम्यूनिकेशन टावर के हमले के जवाब में अमेरिकी फजाई अड्डे के निशानो बनाया वो। कुवैती फौज चया है मुल्क के दुश्मन के ड्रोन हमलों के नाकाम बनाया वो है।

यूरोपी यूनियन जी नुमाइंदा काया कलास वफद सां गॾु पाकिस्तान जे दौरे ते इस्लामाबाद पहुची वई। परडे॒ही ऑफिस आमद ते परडे॒ही वज़ीर इसहाक डार काया कलास जो आदरभाउ कयो। मुलाकात में मित्रपन लाॻापन ऐं वापारी सहकार खे हथी डि॒यण ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। काया कलास वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां बि मुलाक़ात कंदी।

0: नए माली साल जी बजट में 720 अरब रूपये नवन मनसूबन की तजवीज है। सूबन के मुकाबले में वफाकी सरकार वट वसील की घटाई है। वफाकी वजीर अहसन इकबाल है सूबन की तरक्याती बजट में बेहतरी थी है। वफाकी तरक्याती बजट में घटाई थी है। तरक्याती मनसूबा मुकम्मल करण 10,000 अरब रूपये की घुर्ज है।
1: जैसे 18वीं तरमीम में सिंध की तकसीम करने की अदालत गई उनके कें इस वक्त में कबूल करने के तैयार न है। मुल्क के भलाई के लिए आवाम के भलाई के लिए मुल्क के मजबूत करने के लिए आवाम के मजबूत करने के लिए जरूर गौर कभी लेकिन अजा तुम मुसबत हथ में ना आयो इन तबसो कर कबल वक्त लेकिन तकसीम कें भी सूरत गई बर्दाश्त।
0: 18वीं तरमीम में सिंध के विरहांगे की गाल थी तो कबूल न कदासी मुल्क अवाम के मजबूत करने के लिए तरमीम आंदी वही तो डिठो वो जो आए सिंध जो विरहांगो कें भी सूरत में कबूल न कंदी जो आए सिंध के अगवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो चवाए तो सिंध जा जवानों पारा रद्द कल सूबे से पार्टी हुकूमत कर रही है। मौजूदा हुकुमरान अवामी मैंडेट ना अस इन तस्लीम नथा क्यों जैस ताई रियासत की रिट कम नी अमन बहाल नी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अंथक मेहनत का शाहकार तकरीबन 39 किलोमीटर तवील 6 रोया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
5: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारे साथ रहने वाला है। ठीक है, अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने काम के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिदराली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी हम इस प्यारे से खूबसूरत से प्रोग्राम एक बहुत प्यारे खूबसूरत से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलाम हमारी लिस्ट में मौजूद है तो हम जरा कलाम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

जी जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ साथ आप बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम सुन रहे हैं जिसका नाम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम से। आगे सिद्धरा आप लोगों के साथ साथ मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। जनाब अगर जो दे तो आप शामिल प्रोग्राम हो जाया करें, हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में सर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है। ओके जनाब, तो सवाल की बात की जाए तो आज मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों से सवाल पूछूं कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आप लोगों ने किसी की झूठी तारीफ करी है। वैसे तो कई मरतबा ऐसा हो जाता है हमसे अगर कोई भी पूछता है कि मैं कैसे लग रहा हूं या कैसी लग रही हूं तो हम बदले में उसका दिल रखने के लिए कह देते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि हम अगले इंसान की झूठी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपने वाकई किसी इंसान की झूठी तारीफ करी है या फिर नहीं, या आप रोज ही करते हैं। हाँ जी, किसी का दिल दुखाना भी एक बुरी बात होती है। जब हम ये बात सोचते हैं तो हम झूठ बोल देते हैं अगले इंसान का दिल रखने के लिए। चलें, ये बात वैसे सही है गलत है तो इसके ऊपर आगे जाकर बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल आप मुझे ही आप लोगों ने छोटी तारीफ करी है और करी है तो क्यों करी है ये भी बताइएगा। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8821 पर। और अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा फेसबुक पर पेज मिल जाता है और पेज को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद जो है ना, आप पेज को जैसे ही ऑन करते हैं तो वहां पर आपको हमारी प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने होने का एहसास दिलाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ साथ आप मुझे बताइए कि क्या कभी आपने करी है। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बिल्कुल जी आ जाइए प्रोग्राम में, और प्रोग्राम आप लोगों का है जनाब जिसमें आप लोगों को बताया जाता है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अगर हम व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र करें तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के, हाँ जी, ये जो व्हाइट एज वालों के प्रोडक्ट्स है ना, ये बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं, हर इंसान को देकर, हर इंसान की जरूरत को देकर ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो तैयार किए गए हैं। ऐसा आप कह ही नहीं सकते कि भाई ये प्रोडक्ट तो हम लगा नहीं सकते, मेरे मर्जी वाला प्रोडक्ट तो इनमें शामिल है। सारे लोगों की मर्जी के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप लोगों को ब्यूटी क्रीम मिल रही है, साबुन मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, फेयरनेस क्रीम मिल रही है, एक्नी ट्यूब मिल रहा है, लोशन मिल रहा है, हेयर रिमूवल मिल रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर इंसान की जरूरत वाले, बेसिक जरूरत वाली सारी चीजें अवेलेबल है। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको बताएंगे पूरे प्रोग्राम में कि आप क्या तरीकेकार जो है वो फॉलो करके आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जी हमें ज्वाइन करते जाइए और बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे और बताएंगे कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, तभी तो बातें जो हैं वो करने में मजा आएगा। तो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहती हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? लिखते हैं कि उसे कहना जहाँ हमने बिछड़ते वक्त लिखा था कोई रुत हो कोई मौसम मोहब्बत मर नहीं सकती, वहाँ पर लिख गया कोई ताल्लुक ख्वाह कैसा हो बिल आखिर टूट जाता है, तबीयत भर ही जाती है कोई माने ना माने पर मोहब्बत मर ही जाती है। वाह वाह वाह वाह, हजार खान जो तो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम हजार भाव, खुश आयो, ठीक आयो। और अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, अयाज अली खास के लिए भाई तवाजो मोहब्बत हूँ तवाजो ने प्रोग्राम बुध पाया। हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, लोग पूछते हैं मुझसे कि कितना टूटे हो, कहो तो जोड़ दें तुम्हें, कोई बताए उन्हें जाकर के हम तो चूड़े आपने इतनी दुखी वाली, खैर तो है ना। अच्छा, ये किशोर भाई भी हमारे साथ मौजूद, कहते हेलो हाय अदा कैसा है तू, मा सफा मस्त दामदार की आयो ब्रो, और कहते हैं स्मार्ट हाजिर आ है आपके होंठों पर 400

0: 8 वोल्ट की स्माइल लाने के लिए। चलें ये भी अच्छी बात है, वैसे ये वोल्टेज को ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन चलें कोई नहीं। ये थोड़ा सा मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद जमान, कैसे हैं? ठीक ठाक मजे में, दर्द दिल आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम चंदा, आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं मेरी स्वीटी आप कैसी है। और उदास लड़की क्या कहते हैं, हेलो हाई ओपर चानी, वेलकम टू शो एंड वेलकम मी एंड आई याद यू वेरी मच, आई याद यू टू। वैसे कहाँ थी तुम नीनी चोकरी, और ये लगता है यहाँ नहीं मिलती, वो अपने पैसे मुझे दे दे, मुझे तुर्की जाना है। वैसे ये तो मैं भी कहना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि भाई पैसों से सुकून नहीं होता, पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती, भाई आप अपने सारे पैसे हमें दे दे, ठीक है, हम बड़े खुश, और पैसों से वाकई खुशियाँ खरीदी जा सकती है। और पैसों से वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी खरीदे जा सकते हैं। तो जब इंसान जो है ना वो खूबसूरत होगा, खूबसूरतियां मिलेंगी, तो इंसान खुशी हो जाएगा। तो खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। नाम मिलने की सूरत में जो है ना वो नंबर बताया जाएगा आपको प्रोग्राम के अंदर, उसके ऊपर रब्ता जरूर की। और इसके साथ से टाइम कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के जाने वाले आप साथी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश इंडी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए खुशियां।
1: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध, अब
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज

0: फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: FM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अच्छा निधा कहती है कि मेरी ओपा डॉक्टर अच्छी बन सकती है, इतने अच्छे से समझाती है ना। हाँ डॉक्टर मैं अच्छी बन सकती थी वैसे, पता नहीं क्यों मैं बनी नहीं। वैसे बचपन में मुझे डॉक्टर बनना पसंद नहीं था। और वैसे भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो वैसे भाई। अच्छा निधा कहती है टॉपिक, हाँ हाँ मैं करती हूँ, काफी दफा मैंने झूठी तारीफ करी है, एक दफा भाभी की थी, दूसरी दफा कजिन की थी, तीसरी दफा किसकी की थी। भाई मेरी तो नहीं।

ओहिडी प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं और ज्यादा हसीन होते जा रहे हैं. किशोर भाई कहते हैं कि सिस मैंने आज गौर किया इस पिंक कलर वाली लड़की को, पिंक ड्रेस वाली लड़की को, वो पहले दिल दे रही है फिर हाथ से दो टुकड़े भी कर रही है ना, वो इसलिए ताकि आप पहले से जरा जो करने रहे ये दिल जब आप लगाएंगे तो टूट भी सकता है. तो जरा ध्यान से. हजार खान जतोई भाई आपका बहुत शुक्रिया. ऐसा नहीं लिया अरबानी हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ऐसन? हिदायतुल्ला कहते हैं टॉपिक मुझे लोगों का तो पता नहीं लेकिन सिद्रा तुम्हारी तारीफ करता हूँ. अब पता नहीं सच्ची है या झूठी. क्या मतलब, इतना भी नहीं पता. अच्छा नसीर कोसो में सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम करते हैं भाई का. हजार भाई कहते हैं टॉपिक हाँ की है, झूठी तारीफ कभी कभी करनी पड़ती है. झूठी तारीफ दी ये सही बात है, कभी कभी वाकई करनी पड़ जाती है. और हजार भाई कहते हैं कि सब इलम है, साकू इलम है, दुनिया फिल्म है. आहो जी साकू भी ये इलम है. अच्छा सनौला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे ठीक ठाक है? वास भाई कहते हैं अदी से दो जवाब कदें भी कैंची कूड़ी तारीफ ना ही गई. चलो ठीक है. अयाज अली खास के लिए हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. और हैं जी आदिल कहते हैं कि तारीफ सिर्फ हम अच्छा मेरी करते हैं, झूठी भी नहीं करते, सच्ची मुच्ची वाली तारीफ करते हैं. क्या बात है. अली अकबर ब्रोई भाई हमारे साथ मौजूद है सकरेंट से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया.

ओके जी, फलक शबीर की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप एंजॉय करिए और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. मोहम्मद हाशिम हमें सुन रहे हैं सोहबतपुर बलोचिस्तान से और रेहान अली हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम असलम रेहान. अच्छा किशोर भाई कहते हैं मुर्दों को कंधा देने को सवाब समझने वाले लोग जिंदा लोगों को सहारा देना गुनाह समझते हैं. एग्जैक्टली मुख्य करी करी लगना असा सिस्टम थोड़ा उबित हुआ है रखा कर भी चाहता सको. और उसके अलावा बुजुर्गों का साया आ चुका है भाई, आ चुका है. बुजुर्ग का साया, बुजुर्गों का जो साया है ना वो होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात होती है, बड़ी जरूरी बात होती है. और उसके अलावा अदनान समी आ चुके हैं जी लिस्ट में. हिदायतुल्लाह कहते हैं दुनिया गोल है ये सुना था आज देख भी लिया. कल गोश्त बाजार से मिलता था और बर्फ फ्रिज से मिलती थी, आज गोश्त फ्रिज से मिलता है और बर्फ बाजार से मिल रही है. बिल्कुल जी, दुनिया गोल है. हजार बार डाढ़ी गर्मी है बाबा, डाढ़ी गर्मी है. चाचा खाले जुड़ी जो आ चुके हैं, हाय हेलो. अच्छा चलिए, आप थोड़ा सा बिजी लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको वेलकम कहते हैं. वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं.

Ai, ai. Gostou, caralho, इस मोमेंट गोले भाई हेलो जेकब आवाज ही में सुन रहे हैं क्या बात है आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है

मानोला टगड़ भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। दर्दे दिल कहती है कि नहीं सिद्रा, मैं किसी की भी तारीफ नहीं करती, बस तुम्हारी तारीफ करती हूँ, और वो तारीफ झूठी तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। चले मान लेते हैं। चले नया गाना भी सुन लेते हैं, अच्छा लगा तो कल लगा देंगे। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो शख्स खुद महसूस करता है कि हाँ ये सच्ची तारीफ है या फिर झूठी। ये तो है वैसे, कई मरतबा हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं अगला इंसान खुद ही ये जरा कंफ्यूज हो जाता है कि इसने तारीफ करी या फिर समझ गए होंगे।

क्या बात है जनाब, प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की आप क्या समझे थे? अच्छा डायल कीजिए 03 1579 0590 करें, मतलब हम आवाज लाओ प्रोग्राम। हाँ जी, मतलब अच्छा है, अलग ही। अच्छा फहद डेरी सऊद डेरी फ्रॉम नवाब शाह, वालेकुम अस्सलाम, अदा छाले तो खुश आयो। यही जी सलाम बाजी जुल्कनेन सनाफ की खोड़ो फोटो जरदारी का सॉन्ग तो सुनाए, क्या बात है जी जुल्कनेन, आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। आप रहे हैं फरमाइश लगाने की फुल वाली कोशिश करेंगे, थैंक यू। यासीन गुडाड़ू हमारे साथ हैं, डेडिकेट बशीर लेगारी मन मजबूरी तमाची मथा भी अच्छी वेंदी है, चलो खैरा है। और ये माजू दिवाली को मसलाम बाजी सिद्रा, क्या हाल है आपकी? आकाशवरी नाई से मिर्पो खास का उम्मीद अली लाशारी सलाम तमाम नाम चाचा खाले जुड़े जो अदील अबड़ो चौवन कुमार गुरबान खास के लिए अजीज सोलंगी।

0: साथ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास करते हैं। आप जरा बैठे रहिएगा, आप हमारे साथ साथ मौजूद रहिए, पूरे पूरे 3 बजे तक आपका हमारा साथ, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए, खूबसूरत होते जाइए।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: इट्स 2 PM, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN।

सिंध में बदमनी की बाह वधीक दह इंसानी जानू हिड़काए वही लाड़कानो भरसा औरत बिन पुटन ए थी समेत कतुल मियाँ साहब जो कार है तकरार बिन जन जो हयातियों गिड़काए वो घोटकी भरसा में गोठानो गोलिन जो खाज बणजी वो लाड़कानो के माउटा थाने के दमे मुगेरी बिरादरी की बिंदुरन में पुराने तकरार हथियार बंदन जो घर से हमलो औरत जरीना खातून संदस पुट जमीर रोशन ए सायमा मुगेरी कतुल बजना जख्मी पुलिस मुजिब पख्तूल धुर थे बिरादरी के एक जणे के मारण जो इल्जाम हो लाड़कानों में इलाहाबाद थाने के हथ में पसंद जो पढ़ो कदड़ जोड़े के कतुल कर हथियारबंद औरत फिरदोस संदस मुड़स जावेद कोरकानी के कतुल कर फरार थी वह मियाँ साहब जो बखराणी बिरादरी की बिंदुरन में तकरार था जेड़ो थो बजना कतुल औरत जख्मी मकतूल में अब्दुल जब्बार आगा असदुल्ला बखराणी शामिल औरत मारवी जख्मी थी पई आदि सुंदरानी हथियारबंदन का कतुल।

ईरान हकीकत में मुआहिदो करण चाहे तो जो अमेरिका ऐं असां सां गॾु रहंदड़नि जे डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त मुख़ालिफ़ सुकून सां वेहनि ऐं पंहिंजो कमु कनि। आख़िर में सभु कुझु सुठो थिए त में हथियार न ठाहे सघंदो। ईरानी फ़ौज जे अमेरिकी हमले जे जवाब में अमेरिकी फज़ाई एॾे खे निशानो बणाइण जी ईरान जे बाज़ारनि इनकलाब चयो। ईरान जे बेट सिर्क में टेलीकम्युनिकेशन टावर ते हमले जे जवाब में अमेरिकी फज़ाई एॾे खे निशानो बणायो वियो। कुवैती फ़ौज चयो आहे त मुल्क ते दुश्मन जे ड्रोन हमलनि खे नाकाम बणायो वियो आहे। यूरोपीय यूनियन जी नुमाइंदा काया कलास वफ़द सां गॾु पाकिस्तान जे दौरे ते इस्लामाबाद पहुची वई। परॾेही आफ़ियो काया कलास वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ कंदी।

0: जेकॾहिं 28 तरमीम में सिंध खे तक़सीम करण जी जॻह अलॻि कई आहे हुनखे कंहिं बि सूरत में क़बूल करण जे लाइ तयार न आहे। मुल्क जे भलाई जे लाइ, अवाम जे भलाई जे लाइ ऐं मुल्क खे मज़बूत करण जे लाइ, अवाम मज़बूत करण लाइ पाकिस्तान ज़रूर गौर थी, लेकिन अञा ताईं हुनजो को मसलो हथ में न आयो आहे जेकर हुन ते को तबसरो करणु क़बल अज़ वक़्तु हूंदो, लेकिन तक़सीम कंहिं बि सूरत ते कई आहे बर्दाश्त।
1: 28 तरमीम में सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि थी त क़बूल न कंदासीं। मुल्क ऐं अवाम खे मज़बूत करण जे लाइ तरमीम आंदी वई त पोइ ॾिठो वेंदो। जेव आहे सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदी। जेव आहे सिंध जे अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो चयो त सिंध जा जे माण्हुनि पारां रद्द कयल पार्टी सूबे ते हुकूमत करे रही आहे, मौजूदा हुकमराननि वटि अवामी मैंडेट नाहे, असां हिननि खे तस्लीम नथा कयूं। जेसिताईं रियासत जी रिट क़ाइमु न थींदी, अमन बहाल न थींदो। सखर जी एहतसाब अदालत सूबाई वज़ीर मोहम्मद बख़्श जे ज़मीन जा तफ़सील पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। नैब जी दरख़्वास्त ते अदालत ॿुधणी कई। अदालत चयो त सखर ऐं घोटकी ज़िलनि जे कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि में मोहम्मद बख़्श जी केतिरी ज़मीन आहे, संभालींदड़ केर आहिनि, तफ़सीली रिपोर्ट जमा कराई वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
5: अपना शहर, अपना घर, मठियारी और मठियारी की आप
6: GFM 91.6।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88.8 पर। हमारे साथ है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो जनाब यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि खूबसूरती आप कैसे हासिल कर सकते हैं, और न सिर्फ खूबसूरती हासिल कर सकते हैं बल्कि उस खूबसूरती को हमेशा के लिए मेंटेन भी कर सकते हैं, और जो हुसन आपको मिले वो हमेशा आपके पास ही रहे महफूज होकर। तो खूबसूरती को जो है ना वो हासिल करना मुझे लगता है कि आसान काम है, लेकिन उस खूबसूरती को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम बन जाता है, क्योंकि अक्सर हम चीजों को समझने में जरा सी देर कर देते हैं और चीजों को समझने में थोड़ा सा हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएं, मार्केट जाएं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने क्या परचेज करना है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। और आप लोगों की स्किन के लिए जनाब ही तैयार किए गए नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा होने वाले प्रोडक्ट्स का इंतखाब किया करें, ताकि आप लोगों की खूबसूरती जो है ना वो हमेशा बरकरार रहे और आप लोगों को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले बताया व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत ही मजे के प्रोडक्ट्स शामिल है, जैसे कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एज ब्यूटी फेस वॉश है, और ब्यूटी सोप है, लवली क्रीम है व्हाइट एज की, और डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब है। उसके अलावा भी जनाब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जनाब लोशन है, हेयर रिमूवल लोशन है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों के यूज के लिए तैयार की गई है। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और एक मजे की बात है ये कि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं, आप लोगों को नहीं पता कि हम कहां से जाकर परचेज करेंगे, कैसे हमें मिलने वाले हैं, तो आप डायल कीजिए 03-15-799-0595। ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं और आपको आराम से इजीली जाकर आप कर सकें। तो अगर आप हमें किसी भी सिटी से सुन रहे हैं, किसी भी गोट से सुन रहे हैं, तो बस आप डायल कीजिए 03-15-799-0595।

वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन यहाँ पर अब बारी है कि आप लोगों को बताया जाए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक व्हाइटनिंग क्रीम है जो कि नाइट क्रीम है। सिर्फ दो दिनों में आप लोगों को वाजे जो है ना वो फर्क देने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर शामिल किया गया है विटामिन ई बीड्स को और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है और फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप कोई भी आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट लगा नहीं पाते और ये सोचते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो स्किन मजीद खराब होने के चांसेस है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डॉक्टर से तस्दीक शुदा होने वाला प्रोडक्ट है, फुल जनाब आप लोगों की स्किन के लिए सेफ है। आप सिर्फ दो रातें इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को फर्क जो है ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप लोगों की स्किन के अंदर तक जाती है, भरपूर तरीके से आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाती है। और आप लोगों की स्किन अगर डिहाइड्रेट हो चुकी है, रूखी सूखी सी लगती है, काफी आंखों के हल्के पड़ चुके हैं, निशानात काफी सारे जमा हो चुके हैं, दाने नहीं जान छोड़ रहे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों की स्किन के लिए परफेक्ट साबित होने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको है ना वो बहुत सारी ऐसी चीजें एड की गई है जो आपकी स्किन को फ्रेश बनाएगा, आपकी स्किन को क्लीन बनाएगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और आपके चेहरे पर जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए वो सारी रिमूव कर देगा और आपकी स्किन जो है ना वो खिलती रहेगी और खूबसूरत रहेगी और आप ग्लो करते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल कीजिए डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है, तो रात के टाइम इस्तेमाल कीजिए, अपना फेस वॉश कीजिए डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अप्लाई कर लें और दो रातें जो है ना लगातार लगाइए, उसके बाद देखिए आपको कितने अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अप्लाई कीजिए अच्छे वाले प्रोडक्ट्स ताकि आप लोगों की खूबसूरती का ना सिर्फ ख्याल रखें बल्कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाते रहें और सिर्फ आपकी खूबसूरती को जो है ना वो हमेशा के लिए सेफ भी रखें। तो जल्दी जल्दी से आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का यूज कीजिए, लड़के लड़कियां सब ही लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा कि आपने क्या कभी किसी इंसान की झूठी तारीफ करी है? क्या आपको लगता है कि मैंने इस इंसान की झूठी तारीफ करी थी और आपको ऐसा लगता है कि वो जो मैंने तारीफ करी थी वो झूठी की थी? तो कई मरतबा वाकई हम लोगों की झूठी तारीफ कर लेते हैं, तो क्या आप भी करते हैं? आपने भी कभी किसी की झूठी तारीफ करी या नहीं मुझे बताइए जल्दी से 8881। और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो 8881 पर मैसेज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और सेंड कीजिए 8881 पर। और फेसबुक पेज है जनाब GL Larkana FM 88.8 का पेज आपको इजीली मिल जाएगा, पेज को फॉलो कर लीजिए और आपको वहां पर हमारी पोस्ट जो है ना वो लाइव मिलती है व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो के नाम से, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे।

ओके जी ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो पिया और गाने सां गॾोगॾु तव्हांजा मैसेजेस आहिनि उन्हनि खे बि पढ़ंदा हलंदासीं दोस्त खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो हफ़ीज़ चांडियो असांखे ॿुधनि पिया हफ़ीज़ साहब तव्हांजो मोहबतूं प्रोग्राम ॿुधो पिया

अदर सनावला बरोई कहते हैं कि अदी टॉपिक हम किसी की तारीफ नहीं करते, आपका शो बहुत शौक से सुनते हैं जी मोरो FM 88 से। सुने जी सुने, बहुत शुक्रिया। मोरो में मिल रहे ही नहीं YJH ब्यूटी प्रोडक्ट्स या अदी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लेकर जो है ना, मुझे बताइएगा जरा। अच्छा वासा भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद अली बुर्दी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक आया तवा की आयो अदा, और कहते हैं प्यारो प्रोग्राम सोनी सिदरा मिठी। थैंक यू थैंक यू, इलाही सारी तारीफ करी छड़ी। अच्छा अनवर भाई, तव जो मोहब्बत हुआ तव प्रोग्राम बुध पाया बाबा फरमाइशू, तो मुझे लगन मैं हलाइंदी आया, पर मानो अलाए शो चवंदा आया तो असान फरमाइशू तो हलाइंदी ना, अगर मैं सोचा पई तो वरी फरमाइशू बंद कर न हलन नहीं कोई वरी दां कर दो। निदा ही जो ना प्यार जो इजहार करे पो, कदी कदी अस ये प्यार जो इजहार कदा अगले मानू के लगन तो ही जड़ो करे पो। अच्छा निदा अली आपका बहुत शुक्रिया मेरी जाना आप हमारे साथ हैं। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक इस जमाने में कभी कभी झूठी तारीफ करनी पड़ती है वरना लोग समझेंगे ये पागल है। अच्छा नहीं नहीं हिदायतला नहीं देख रही बस में। अनवर भाई यो गानों मु कल ही हलायो हो तमा जेको ना कल मुझे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम तो पयो हों ना वो तुम बुधी सको था।

न बाबा न बाबा सड़ो न एक बे का सड़ा तो कम कि हल्द रंग जो है तारो सावरो मू एक बे का सड़ना है उनको रंग सावरो वो तमाम भी न सड़ो तवे खूबसूरती असर न अचे खूबसूरत रहो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा डी स्किन फेस वॉश लगा अगर न तो मिले तवे करीबी जनरल स्टोर तक डायल कर 03-15-799-0595

गुप्ता है मेरे साथ। इमरान अली बिरोई भाई हमें लाड़काना से सुन रहे हैं। भाई जान अब तो वही बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ है आगे साथ। बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और गोरे गोरे हो जाइए। और विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सिद्रा आज झूठी सी तारीफ करना मुनाफकी है बाजी, सॉरी हमसे ये काम नहीं होगा बाजी। हमें मुरीद अब्बास का गाना तो सुनाइए, थैंक यू। एंड आसिफ सोलंगी है, शमन सोलंगी है, मुदस्सर सोलंगी, सलीम एंड मुबशिर सोलंगी भी आपके साथ है। चलिए बहुत शुक्रिया सब भाइयों का, आप हमारे साथ हैं। कश्यप भी हमारा शो सुन रही है, कश्यप मेरी जान आपका वेलकम। जी बिल्कुल, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल कीजिए। ऑल स्किन टाइप के लिए है, सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लगाते जाइए, गोरे गोरे पाले पाले बनते जाइए। और इसी के साथ साथ टाइम होते ही तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट।

0: कहती हूँ अम्मी, मैं मनोज होती जिंदगी में, अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना दे ले।
2: देखिए रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

गई थी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे थे व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, सो व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, तो अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दोनों सूरतों में आप ये मुझे जरूर बता दिया करें कि कौन सा प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप लगाना चाह रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाते हैं, तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आप लोगों ने किसी की झूठी तारीफ करी है।

दोस्तों हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में है और बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम सुन रहे हो। वो जानना चाहते हैं जनाब जो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन तमाम प्रोडक्ट्स में जो है ना वो डिफरेंस क्या है। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम चीजों को जो ना वो समझने में और चीजों को इस्तेमाल करने से पहले जो ना वो कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी आप जाने पहचाने तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी चीजों में डिफरेंस करना ये नहीं जानते हैं तो भाई जाने आप इन चीजों को, क्योंकि ये आप लोगों के फायदे के मुताबिक होते हैं। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएगा बल्कि ये सारे जितने भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ना ये सारे नेचुरल अज़ा से तैयार शुदा हैं। और एक मजे की बात है कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ना आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे वो ब्यूटी क्रीम हो, साबुन हो, फेस वॉश हो, फेयरनेस क्रीम हो, एक्नी ट्यूब हो। बस आप अपने मसले को जो है ना वो देखेंगे कि आपको क्या और कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए और नाम लेकर तलब कीजिए। और साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा तो डायल कीजिए 03 15 799 0595।

0: Lionware.
1: Okay, जी, so whitish beauty products आप इस्तेमाल करें, साथ साथ आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना, ये मैं ऐसा कह सकती हूँ कि उन लोगों के लिए जिनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, जो ये सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन के लिए भी कोई प्रोडक्ट तैयार किया गया है या फिर नहीं, तो आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि डॉक्टर के नजदीक शुदा होने वाला ये प्रोडक्ट है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम विटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन के साथ तैयार किया गया है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

ओगरी सकलेन आभास हमारे साथ मौजूद है। सकलेन भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुन रहे हैं। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू है। तुम्हारा जो शो वेरी नाइस आए सलाम तुम्हारे वालेकुम असलम प्यारा भा। और ये हमारे साथी जी कश्यप, हेलो कश्यप शाला खुश आयो। अज भला सफा नंढो मैसेज कर खैर है।

0: अच्छा छो
1: जब तो मैनू मैं
0: छोकरी सदरा मुस्कान
1: मैं ओदे दिल दा जानी मैं ओदे दिल दा जानी।
0: अच्छा तुम्हें फायसा आली जो गानो बुधन चाहियो था पर ता पांजो नालो तो लिखियो ही कोने को तो मबतु प्यारे भाजू वोट हाजी गुलाम खास के लिए लग जंडो मरी का कुर्बान अली खास के लिए मेरे साथ माजरा हेलो इमरान अली बिरोई भाई के आज सदरा टॉपिक है ना करें भाई हाँ भाई जान ये बंटो की जान है मैं आ रही हूँ कमेंट्स की जानिब सबर करिए। अच्छा सजाद अली जमाली है सिटी नवाब शाह शो इज नाइस सॉन्ग प्ले ममताज मोलाई सोहणो भी सोहणो यो गानो वैसे काफी टाइम थियो असा कोन बुधो आ सो हलाइण जी बिल्कुल कोशिश कंदा सी अजु न त सुभाणे असा जरूर बुधंदा सी ठीक आ। अच्छा मकसूद तमाम जो गानों भी सुबाने लाइंदा सी ठीक है और मौजूद है जी वालेकुम अस्सलाम ए बी रिंद मैं अक्सर अपनी वाइफ की झूठी तारीफ करता हूँ जब वो गुस्से में होती है तो वैसे ये तो एक लाजमी सी बात बन गई है कि अपनी बीवी की तारीफ करें वो झूठी हो या सच्ची हो तारीफ आप लाजमी कर लिया करें। और ये हमारे साथ ही बाजी हाय मस्ती मस्ती बस इतना ही मैसेज लिखा है बाजी हाय मस्ती मस्ती ऐ केड़ा तरीका है नाम भी लिख दिया करें अपना अल्तानी हमारे साथ है कहते प्लीज प्लीज सजाद अली याद तो आती होगी दिल दुखाती होगी डेडिकेट अजरा होसो एंड यू वेलकम करते हैं आपको चाचा।

अच्छा दर्द दिल लगते हैं क्यों तो अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे क्यों तो अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे उसमें क्या क्या देखा है वक्त मिला तो सोचेंगे मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है वक्त मिला तो सोचेंगे वक्त मिला तो सोचेंगे भाई पाकिस्तानी गाना है ना करें थोड़ी रिसर्च कर लिया करें।

ندى

जादू, धूप वाला जादू। ओके हसबैंड भी आ रहे हैं और वासु भाई आपका भी बोला चलें ये गाना हम कल लगाएंगे, बस आप याद दिलाइएगा मुझे। अनवर भाई इतना जो है ना वो गुस्से में मत रहा करें, थोड़ा सा रिलैक्स कूल रहा करें, ठीक है। और उनके अलावा आदिल क्या कहते हैं, आपको भी कंबट आई है ना? नको बिल्कुल नहीं। ईश्वर भाई कहते हैं समझ नहीं आया तब इतना हंसी हो, अगर समझ आता तो, वैसे थोड़ा थोड़ा समझ आया था, वो पढ़ा नहीं मैंने। बात ऐसी थी कि बताई नहीं जा सकती थी। समझ आया करें। अच्छा बिलाल लोधरा हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमें पंजाब से सुन रहे हैं। ओके जी सुफियान अहमद हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम सुफियान, कहाँ गायब थे? ओ उल्टा ये मुझे कह रहे हैं कि आप सुधरा कहाँ गायब थे। अरे भाई मैं यही थी, आप गायब थे। अच्छा शहबाज, शहबाज भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया।

0: बस वजह इस
1: वो लड़की है या जादू
0: जादू
1: वो लड़की है या जादू।
0: हाँ जी भाई जान, वो लड़की जादू हो गई है क्योंकि उसने वायरिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है और उसकी खूबसूरती देखकर ये इंसान जो है ना ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या हो गया है। वो ये जरा आपको मैं बात जरा क्लियर करूंगी कि वो जो लड़की है ना वो वायरिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। तो आप भी वायरिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी पाली पाली हो जाए, खूबसूरत हो जाए, लोग आपकी बिल्कुल ऐसे ही तारीफ करें।

0: ओके जी, सो गाना हमने बहुत ही अच्छा वाला सुना और उसके साथ साथ हैं जी यहाँ पर असद बलोच हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम डियर सिद्रा, आप कैसी हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगी आप। मैं लेट शामिल हो रहा हूँ शो में, आपकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है और शो आपकी आवाज की वजह से सुपर्ब है। आज के टॉपिक पर बात करना चाहेंगे कि करनी पड़ती है किसी ना किसी की झूठी तारीफ। वैसे हाँ असद, किया करें, कोई मसले की बात ही नहीं। ये छोटी सी जो खुशी है ना, वो लोगों में बांटा करें। वैसे भी आजकल लोग खुशियां कम ही बांट रहे हैं, तो तारीफ कर लिया करें। हाँ तांगे छापे लगे गानो कला कलंदु छापला।
1: कहानियों की पतना
0: इसको तो खत्म होना ही था, इसको जाने थी नगमा।

0: राजा किशोर भाई आप सोच लें कि आपने तारीफ करनी है क्योंकि ऐसे नहीं। अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं जी फजीला सिंधी, वालेकुम अस्सलाम, क्या कहती हैं? गुड आफ्टरनून, सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सभी लड़कियों को टॉपिक नहीं नहीं डियर। ओए प्यारी
1: मेरे सरा करीब हो गई हसीन
0: मेरे हस्बैंड कभी कभी मेरी झूठी तारीफ करते हैं, हस्बैंड सारे ऐसे होते हैं।
1: ना ही बादलों के बरसात हो गई, मैं किस तरह बताऊं
0: जो दिल में है छुपी, तू जानती है सब कुछ पर कहती कुछ भी नहीं,
2: कहती कुछ नहीं।
1: कहानियों की एक परी मेरी बाहों में है।
0: टाइम खत्म हो गया भाई मेरे शो का, तो अब मुझे जाना पड़ेगा।
1: ये दिल खुशी से फूल के यूं गुब्बारे की तरह निकला।
0: ओके सो वरी, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात मेरी होने वाली है कल वाले प्रोग्राम में। एक बजे से लेकर तीन बजे तक आपका हमारा साथ रहता है, बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिएगा। और साथ साथ व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिएगा, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। ऐसे ही अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसी बात कह दी हो जो आप लोगों को बुरी लगी हो, तो मैं माजरत कर देती हूँ। सो मुकरानी नाय बाबू सिंह सलामत, साहब सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 PM. This anchek is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6।
5: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न सिर्फ उसी अवामी फलसफे की अमीन है बल्कि उस की तकमील में तकरीबन नया जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस तेज रफ्तार सफरी सहूलत वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत तरक्की का सफर आवाम का फखर हुकूमत सिंध।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

बोले मारे दुख बिल्कुल इस नमक नमक गिलास में, मगर गिलास का पानी के पानी को मुट्ठी भर नमक से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह इंसान भी अपने जर्फ के मुताबिक तकलीफों का जायका महसूस करते हैं। जब तुम्हें कोई दुख मिले तो खुद को बड़ा कर लो, गिलास मत बनो बल्कि झील बन जाओ। अल्लाह ताला की वो हमारी बेशक यकीन के साथ जिंदगी गुजारी है। आपका इर्द गिर्द बेशुमार खुशियां आपकी मंतजर है। आपका काम सिर्फ इनकी खोज लगाना है, इन्हें अपनी जानिब रागिब करना। याद रखिये वही में जो रास्ते की तमाम रुकावटों को हटाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत करते रहिए। बहुत सी खूबसूरत मंजिलें आपकी मंतजर है। यही है आज का पैगाम आप सबके नाम। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम इन अवर शो एज यूजुअल जी मीर प्रकाश एफएम 88 के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सब दोस्त हमारे लेकर आपके साथ आरजे गुलनास। अरे जनाब कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक ठाक है, बखैर वाफियत है और यकीनन आपका आज का दिन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गुजर रहा होगा। और जनाब आपके लिए हमेशा हमारे लबों पर दुआ होती है। अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट है मुसब्बिब अल असबाब है, पुकारने वाले की पुकार सुनने वाले, हाजत रवा दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्शने वाले, हमारे लिए सबब पैदा फरमा, हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, हम बेबसों की पुकार सुन ले, हमारी हाजतें पूरी फरमा, हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्श दे, हमें अपने दर से नवाज, हमें अपने अलावा दुनिया में मोहताज ना बना।

0: रहा है। कौन अकलमंद निस्नर है हमारे साथ?
1: अरकाना से वफा चाहेंगे।
0: वेलकम कहेंगे अगले आपके। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको चांद आएंगे
1: ध्यान
0: क्या 15-16 लोगों को लेके जाएंगे क्या फ्री में? एक को लेके जा रहे हैं, बड़ी बात है। मैं समझ गई, आप बड़े ही बहुत शुक्रिया। नूरजहाँ का बारे वाली न्यूज के बाद, सोलर वाली न्यूज के बाद नूरजहाँ सुनाएंगे। बजे तो बहुत वाले न्यूज ब्रेक का। नेक्स्ट
2: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम यास्मीन। चांद पे जाना है आपने और एक को साथ लेके जाना है, अकेले नहीं भेज रहे हम आपको। मेरा सेलफोन पे या कब से मेरा हमेशा का पढ़े आपको गवारा है ये।
2: अभी मैं अपने भांजे को लेकर जाऊंगी।
0: अब अरे वाह, क्या कह भांजा भाजी सुन रहे हैं आपको? तेरे भांजा बस बस मैंने
2: है सब बहुत है माशाल्लाह, 8 दिन है उनके बच्चे सब के। लेकिन ये भांजा मेरे शहर में छोटा था ना, फिर मैं जब भी इसको अपने साथ लेकर जाया करती थी साथ। तो 18 साल का अब जब भी कहीं जाती हूँ ना, बहुत
0: ब्रेक पे जाना है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया।
2: अल्लाह हाफिज़।
0: तो के सिलसिले को ब्रेक

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की.
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
2: कुरान रोजानो सुबह.

ॿुधाइणु चाहिनि था। इस्लामाबाद जे फैसले जो सदाई नुक़सान भोगियो आहे। ॿियूं जमातूं बी आई एस पी खे बि ख़तम करणु चाहिनि थियूं। संदन सोच आहे त बी आई एस पी सूबनि हवाले कयो वञे। गिलगित बल्तिस्तान जे इलाइक़े शुगर में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त वफ़ाक गिलगित बल्तिस्तान ऐं आज़ाद कश्मीर बाबति वज़ारत ख़तम करे। आज़ाद कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान बाबति फ़ैसलो इस्लामाबाद में वेठल को बाबू न पर हितां जे आवाम खे करणु घुर्जे। गिलगित बल्तिस्तान ऐं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान में चूंडुनि वक़्त थियणु घुर्जे। पीपल्स पार्टी सदाई जंग ख़िलाफ़ रही आहे। ख़तरे में जारी जंग जे ख़ात्मे वारनि फील्ड मार्शल जे कोशिशुनि जी कामयाबी जे लाइ दुआगू आहियूं। जंग जल्द ख़तम न थी त सभिनी खे वधीक माली भार बर्दाश्त करणो पवंदो। पाकिस्तान खिते जी वॾी ताक़त ऐं यूरोपी यूनियन जो भाईवार आहे। अमेरिका ऐं ईरान विच में जंग जे ख़ात्मे जे लाइ पाकिस्तान जो किरदारु बेबाकाण जोॻो आहे। यूरोपी यूनियन जी नुमाइंदा काया कालास चयो आहे त पाकिस्तान खे आलमी कानून मूजिबि पंहिंजे अवाम जे दिफ़ा जो हक़ हासिल आहे। खिते जी मौजूदा सूरतहाल में मसइले जो हल फिज़ाई हमला न पर ॻाल्हियूं ई आहिनि। नायब वज़ीर आज़म साद डार चयो त यूरोपी वफ़द सां हिंदुस्तानी फितने जे अफ़ग़ानिस्तान में मौजूदगी ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। सिक्योरिटी मामलनि ते बि तफ़सीली ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। पाकिस्तान यूरोपी यूनियन सां गॾिजी खिते में जटादार अमन जे क़याम जे लाइ कोशिशूं जारी रखंदो।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक। साइंस पुरखास में मैट्रिक पास शागिर्दनि लाइ हिकु ऐं ॿिनि सालनि जी डिप्लोमा जे कोर्सेस लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन, क्रिटिकल केयर, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर। दाखिला फीस 5,000, महवार फीस 4,000। रिकॉग्नाइज्ड बाय अलाइड इन हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एफिलिएटेड विद सिंध टेक्निकल बोर्ड। एड्रेस मोहम्मद उमर बुगियो, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, मीरवा रोड, नियर डिस्ट्रिक्ट जेल, डिफेंस सिटी, मीरपुर खास।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: ये भी तो जुर्म ही हुआ ना कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे एतबार किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: तो अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना फिर तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: अच्छा तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना गेट आउट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।

0: हर पहर। जिंदगी की लहर।
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
2: जूट विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: एक और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो चेयरमैन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पल है अंथक मेहनत का शाहकार। तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो। एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का सफर। हुकूमत सिंध।
4: मोहम्मद उमर बुगलो ट्रस्ट हॉस्पिटल, जहां माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी मुनासिब फीस पर मरीजों का इलाज किया जाता है। सर्जिकल और मेडिकल सहूलियात, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस, इंसानियत की खिदमत हमारा मकसद। एड्रेस मोहम्मद उमर बुगलो ट्रस्ट हॉस्पिटल, मीरवा रोड, मेज, डिस्ट्रिक्ट जेल, डिफेंस सिटी, मीरपुर खास। मजीद मालूम के लिए 03-41-34-29-824।
5: आँखों के सबसे बड़े इदारे के मशहूर और तजुर्बे का ऑप्शन नजरिया लेजर फेको, काले पानी का इलाज और ऑपरेशन, पर्दों की बीमारियों का इलाज और आँखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक। इतवार तातील है और जुम्मे को ऑपरेशन किए जाते हैं। एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान, लेजर आँखों का अस्पताल, सर सैयद रोड, गरीबाबाद, मीरपुर खास। फोन नंबर 03-03-261-7077।
6: सिंधड़ी आमों की सरजमीन,
7: सिंध का शहर खार।
8: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: एरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क
1: एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा

0: यह है मोहब्बतो यकजहती।
1: सिर्फ GFM 88 नेटवर्क दे
0: दरियाए सिंध।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क
1: एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत और यकजहती।

0: हर पहर लहर GFM 88 नेटवर्क
1: एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत और यकजहती।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सालनका रुगो पंजाब KPK एन सूबन ते खर्च किया पे वे सिंध के नजरअंदाज किया पे वे जै कर इन मामले ते नजरसानी कई वे।

पाकिस्तान खिते की वही ताकत यूरोपीय यूनियन जो भाईवार है। अमेरिका ए ईरान विच में जंग के खात्मे लाए पाकिस्तान जो किरदार भी वाखण जोगो है। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा काया कालास है तो पाकिस्तान के आलमी कानून मूजिब पंजी ए अवाम की दिफा जो हक हासिल है। खिते की मौजूदा सूरत हाल में मसले जो हल फिजाई हमला न पर गाल ही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार चयो तो यूरोपीय वफद से हिंदुस्तानी फितने की अफगानिस्तान में मौजूदगी गाल सिक्योरिटी मामलों से भी तफसीली गाल पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से गड़ी खिते में जटादार अमन के क्याम लाय कोशिशों जारी रख। अमन गाल की कामयाबी की दावान दौरान अमरीका ए ईरान जहा एक बे ठाकन से हमला। अमरीकी फौज की ईरानी बेट सिरक से फौजी ठाकन से हमला। जवाब में ईरानी फौज जहा कुवैत में अमरीकी अड्डन से ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब है तो ईरान की बेट सिरक में टेलीकम्यूनिकेशन टावर से हमले के जवाब में अमरीकी फिजाई अड्डे के निशानों बढ़ाया वो। कुवैती फौज है तो मुल्क से दुश्मन की ड्रोन हमलों के नाकाम बढ़ाया वो है। ईरान हकीकत में वायदो करण चाहे तो जो अमरीका असा सा गड रहंदड़न लाए सुठो साबित थींदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो है तो मुखालिफ सुकून सा वेहन ए पंजो कम कन। आखिर में सब कुछ सुठो ही थींदो। ईरान कदें भी एटमी हथियार न ठाए सकंदो। अमरीका से गालियों कंदड़ ईरानी वफद के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालीबाफ जो अमरीका से जंगबंदी की भंजकड़ी करण जो इल्जाम। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ चयो है तो बहरी नाकाबंदी ए लबनान से हमलन में वाद साबित करे थी तो अमरीका जंगबंदी से अमल न करे रो है। ईरानी परदेही तर्जमान इस्माइल बकाई चयो तो ईरान दिफा जो हक इस्तेमाल कंदो रहंदो। हमलन जो जवाब दिनो वेंदो। पाड़ेसरी मुल्क पांजी सरजमीन ईरान से हमलन का इस्तेमाल करे। अमरीकी मीडिया के ईरानी सदर मसूद पेशिकियान की मुस्तफी थियण की दावा। ईरान के पासदारान इनकलाब सदर मसूद पेशिकियान की इस्तीफा की तरदीद करे छी। अमरीकी मीडिया मूजिब पेशिकियान अख्तियार घटजन से इस्तीफा दिनी है। पासदारान इनकलाब तरदीद कन्दे चयो है तो मसूद पेशिकियान सदारत ता मुस्तफी ना है थियो। सिंध के नए माली साल 2026-27 की बजट तैयार की वही। 12 जून से सिंध असेंबली में पेश थे जो इम्कान। नए माली साल में गुजरियल माली साल वाली तरक्याती बजट रखने की तजवीज। सूबाई एडीपी बजट 520 अरब ए जिले तरक्याती बजट 55 अरब रुपया रखने की तजवीज तैयार। स्कूल एजुकेशन खाते की तरक्याती बजट 17 अरब 82 करोड़ ए कॉलेज एजुकेशन खाते की 7 अरब 10 करोड़ रुपया रखने की तजवीज। लाइव स्टॉक एंड फिशरीज खाते लाए 2 अरब 64 करोड़ ए मकानी खाते लाए 78 अरब 8 करोड़ रुपया रखने की तजवीज शामिल। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते की 24 अरब 66 करोड़ रुपया तरक्याती बजट रखने की भी तजवीज तैयार की वही है।

0: सिंध में बदमनि जी बाह वधीक 10 इंसानी जानियूं गड़काए वही। लाड़काणे भरसां औरत बिन पुटनि ऐं धीअ समेत क़त्ल। मियां साहिब भरसां कार तकरार तां बिन ॼणनि जूं हयातियूं गड़काए वियूं। घोटकी वेझो बि ॻोठाणो गोलियुनि जो खाज बणजी वियो। लाड़काणे जे माहूटा थाणे जे हद में मुगेरी बिरादरी जे बिन धुरनि में पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो। औरत ज़रीना ख़ातून संदसि पुट ज़मीर रोशन ऐं धीअ साइमा मुगेरी क़त्ल। ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस मूजिब मक़तूल धुर ते बिरादरी जे हिक ॼणे खे मारण जो इल्ज़ाम हो। लाड़काणे में ई अलाहाबाद थाणे जे हद में पसंद जो परणो कंदड़ जोड़ो क़त्ल। हथियारबंद औरत फिरदोस ऐं संदसि मुड़ुस जावेद कोरकाणी खे क़त्ल करे फरार थी विया। मियां साहिब भरिसां बखराणी बिरादरी जे बिंदुरनि में कार ऐं तकरार तां जहिड़ो ॿ ॼणा क़त्ल थी विया। औरत ज़ख़्मी। मक़तूलनि में अब्दुल जब्बार ऐं आगा असदुल्ला शामिल। औरत मारवी ज़ख़्मी थी पई। घोटकी भरिसां ॻोठाणो नादर सुंदराणी हथियारबंदनि हथां क़त्ल थी वियो। मक़तूल जे वारसनि जो घोटा धुर ते ॻोठाणे खे मारण जो इल्ज़ाम। कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस पारां कुझु माण्हुनि खे हिरासत में वठण जी दावा।
1: जेकॾहिं 28 तरमीम में सिंध खे तक़सीम करण जी ॻाल्हि आहे त जयू आहे हुनखे कंहिं बि सूरत में क़बूल करण जे लाइ तयार न आहे। मुल्क जे भलाईअ जे लाइ, अवाम जे भलाईअ जे लाइ ऐं मुल्क खे मज़बूत करण जे लाइ, अवाम खे मज़बूत करण लाइ मजिस्ट्रेट जयू आहे हुन ते ज़रूर गौर कंदी। लेकिन अञा ताईं जेको मसलो हथ में न आयो आहे, हिन जे करे हुन ते को तबसरो करण क़बल अज़ वक़्तु हूंदो। लेकिन तक़सीम कंहिं बि सूरत ते जयू आहे बर्दाश्त।
0: 28 में सिंध जी विरांगे जी ॻाल्हि थी त क़बूल न कंदासीं। मुल्क ऐं अवाम खे मज़बूत करण लाइ तरमीम आंदी वई त पोइ ॾिठो वेंदो। सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न हूंदो। जयू अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो चयो आहे त सिंध में बदमनी चोट चढ़ियल आहे। जेसि ताईं रियासत जी रिट क़ाइम न थींदी, अमुन बहाल न थींदो। एम क्यू एम वफ़ाक़ी बजेट ते वॉन्ट ॾियण लाइ अॻूणे गवर्नर कामरान टिसोरीअ जी बहाली जो शर्त रखी छॾियो। एम क्यू एम अॻवान फारूक सत्तार चयो आहे त कामरान टिसोरी जी बहाली संदन रेडलाइन आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिल वॾो करे कामरान टिसोरी खे ॿीहर सिंध जे गवर्नर तौर बहाल करे। सखर जी एहतसाब अदालत सूबाई वज़ीर मोहम्मद बख्श मार जी ज़मीननि जा तफ़सील पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। नेब जी दरख़्वास्त ते अदालत ॿुधणी कई। अदालत चयो त सखर ऐं घोटकी ज़िलनि जे कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि में मोहम्मद बख्श मार जी केतिरी ज़मीन आहे, संभालींदड़ केर आहिनि, तफ़सीली रिपोर्ट जमा कराई वञे। मंशियात केस में गिरफ़्तार कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकीअ खे पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत खे ॿुधणी मुलतवी करे ईंदड़ ॿुधणीअ खे पिंकीअ खे वीडियो लिंक ज़रिए पेश करण जी इजाज़त ॾियण जी दरख़्वास्त। अदालत दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। गार्डन थाणे ते दाख़िल केस में शामिल ॿिन जवाबदारनि ज़मानत लाइ अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। जवाबदार सोहेल रहमान ऐं ज़ीशान ज़मानत लाइ दरख़्वास्त दाख़िल कई। पुलिस पारां ज़मानत वारी दरख़्वास्त जी मुख़ालफ़त। घोटकी भरिसां लजालत जो शिकार थियल नारी हूरा चाचड़ 164 जी बयान लाइ अदालत में पेश। अदालत ॿुधणी 4 जून ताईं मुलतवी कंदे जवाबदारनि खे साॻिए ॾींहं ते पेश थियण जे लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। केस में नामज़द हिकु जवाबदार निसार चाचड़ गिरफ़्तार थियल। मुश्ताक चाचड़ समेत 3 जवाबदार हिफ़ाज़ती ज़मानत ते आहिनि। रोहिड़ी जे तालके इस्पताल में औरत अणॼातल शख़्स जो लाश छॾे फरार। अणॼातल औरत मुबैना तौर हिकु शख़्स जो लाश रक्षे ज़रिए इस्पताल छॾे फरार थी। इतला ते पुलिस जांच शुरू करे छॾी। पुलिस मूजिब फौती शख़्स जी उमिरि 50 साल लॻी रही आहे। सुञाणप लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। कैनपुर वेझो शाह हुसैन थाणे जे हद ॻोठ मिठो मरी मां गुज़िरियल ॾींहुं हथायल पीरसन शख़्स जी लाश जी सुञाणप थी वई। पुलिस मूजिब फौती पीरसन ज़हूर ख़ान वलद करीम बख़्श रहीमया ख़ान वासी आहिनि।

0: कराची के डिफेंस।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: ये भी तो जरूर नहीं हुआ ना, इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इतबार किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट चुका है।

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: चलने की है उसके पाकीज़ा किरदार पर खींच और उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कहते थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
1: चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आहे त वफाक जीबी ऐं आज़ाद कश्मीर बाबति वज़ारत ख़तम करे आज़ाद कश्मीर ऐं जीबी बाबति फ़ैसिलो इस्लामाबाद में वेठल को बाबू न पर हितां जे अवाम खे करणु घुर्जे। जीबी ऐं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान में चूंडू वक़्त थियणु घुर्जे। पीपुल्स पार्टी सदाई जंग ख़िलाफ़ रही आहे, किथे में जारी जंग जे ख़ात्मे लाइ वारनि फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि जी कामयाबी लाइ दुआगू आहिनि। वफाकी हुकूमत पारां नए माली साल जे बजट में बि सिंध खे नज़रअंदाज करण जो इंकशाफ। ॿियनि सूबनि जे भेट में सिंध जे रोडनि लाइ घटि में घटि पैसा रखण जो इंकशाफ। एनुअल प्लान कोआर्डिनेशन कमेटी जे इजलास में शरीक सिंध जे नुमाइंदे जो वफाकी हुकूमत जे रवैये ते सख़्त एहतजाज। ज़रीन जो चवण आहे त राणीपुर मोरो रोड जी तामीर लाइ 47 अरब रूपियनि मां रुगो 5 अरब रूपिया रखिया विया। सखर राणीपुर टंडो आदम टंडो अलिया रोड लाइ बि 150 अरब रूपियनि मां रुगो 3 अरब रूपिया रखिया विया। इजलास में शरीक जाम खान शोरो चयो आहे त वफाकी बजट में सिंध जे रोडनि खे नज़रअंदाज कयो वियो। लॻे थो त बोर्ड लॻाए रोड बंदि करणा पवंदा। 13 सालनि खां रुगो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा ऐं ॿियनि सूबनि ते ख़र्च कयो पियो वञे, सिंध खे नज़रअंदाज कयो पियो वञे, जंहिं करे इन मामले ते नज़रसानी कई वञे। पाकिस्तान खिते जी वॾी ताक़त ऐं यूरोपीय यूनियन जो भाईवार आहे। अमरीका ऐं ईरान विच में जंग जे ख़ात्मे लाइ पाकिस्तान जो किरदार बि वाखाण जोॻो आहे। यूरोपीय यूनियन जे नुमाइंदा काया कालास चयो आहे त पाकिस्तान खे आलमी कानूननि मूजिब पंहिंजे ऐं अवाम जे दिफ़ा जो हक़ हासिल आहे। खिते जी मौजूदा सूरतहाल में मसइले जो हल फिज़ाई हमला न पर ॻाल्हियूं ई आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त यूरोपी वफ़द सां हिंदुस्तानी फितने जी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। सिक्योरिटी मामलनि ते बि तफ़सीली ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन सां गॾिजी खिते में जटादार अमन जी क़याम लाइ कोशिशूं जारी रखंदो।

ईरान जा एक बेजी जी ठाकन ते हमला। अमरीकी फौज जी ईरानी भेट सिरक ते फौजी ठाकन ते हमला। जवाब में ईरानी फौज जा कुवैत में अमरीकी अड्डन ते ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब चुका है ईरान की भेट सिरक में टेली कम्युनिकेशन टावर ते हमले के जवाब में अमरीकी फिजाई अड्डे के निशानो बनाया वो। कुवैती फौज चुका है मुल्क के दुश्मन के ड्रोन हमलन के नाकाम बनाया वो। ईरान हकीकत में मुआदो करण चाहे तो जो अमरीका असा सा गड रहंदड़ लाए सुठो साबित थींदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त मुखालिफ सकून सा वेहन ऐं पंहिंजो कम कन, आखिर में सब कुछ सुठो ही थींदो। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार न ठाहे सघंदो। अमरीका सां ॻाल्हियूं कंदड़ ईरानी वफ़द जे सरबराह मोहम्मद बाकिर कालीबाफ जो अमरीका ते जंग बंदीअ जी भञ कड़ी करण जो इल्ज़ाम। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ चयो आहे त बहरी नाकाबंदी ऐं लबनान ते हमलनि में वाध साबित करे थी त अमरीका जंग बंदी ते अमल न करे रहियो आहे। ईरानी परदेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो त ईरान दिफ़ा जो हक़ इस्तेमाल कंदो रहंदो, हमलनि जो जवाब ॾिनो वेंदो। पाड़ेसरी मुल्क पंहिंजी सरज़मीन ईरान ते हमलनि लाइ इस्तेमाल थियण न ॾिनो। अमरीकी मीडिया जे ईरानी सदर मसूद पशिकियान जी अमरीकी मीडिया मूजिब पशिकियान अख़्तियार घटिजण ते इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। पासदारान इनकलाब तरदीद कंदे चयो त मसूद पशिकियान सदारत तां मुस्तफ़ी नाहे थियो। सिंध जे नए माली साल 2026-27 जी बजेट तयार थी वई। 12 जून ते सिंध असेंबली में पेश करण जो इम्कान। नए माली साल में गुज़िरियल माली साल वारी तरक़ियाती बजेट रखण जी तजवीज़। सूबाई ADP बजेट 520 अरब ऐं ज़िले तरक़ियाती बजेट 55 अरब रूपया रखण जी तजवीज़ शामिल। स्कूल एजुकेशन खाते जी तरक़ियाती बजेट 17 अरब 82 करोड़ ऐं कॉलेज एजुकेशन खाते जी 7 अरब 10 करोड़ रूपया रखण जी तजवीज़। लाइव स्टॉक ऐंड फिशरीज़ खाते लाइ 2 अरब 64 करोड़ ऐं मकानी खाते लाइ 78 अरब 8 करोड़ रूपया रखण जी तजवीज़ शामिल। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते जी 24 अरब 66 करोड़ रूपया तरक़ियाती बजेट रखण जी बि तजवीज़ तयार कई वई।

0: सिंध में बदमनी की बाह वधीक डह इंसानी जानू गड़काए वही लाड़काने वेझो औरत बिन पुटन ए धी समेत कतल मियां साहब भरसा कार तकरार बिन जणन जू हयातियो गड़काई वयो घोटकी वेझो बे गोठानो गोलन जो खाज बणजी वयो लाड़काने जे माहूटा थाने जे हद में मुगेरी बिरादरी जे बिन धरन में पुराने तकरार हथियार बंदन जो घर ते हमलो औरत जलीना खातून संदस पुट जमीर रोशन ए धी साइमा मुगेरी कतल बजण जख्मी थी पिया पुलिस मौजिब मकतूल दौर ते बिरादरी के एक जने के मारण जो इल्जाम हो लाड़काने में ही अलाहाबाद थाने के हद में पसंद जो परणो कंदण जोड़ो कतल हथियारबंद औरत फिरदोस ए संदस मुड़स जावेद कोरकानी के कतल कर फरार थी व्या मियां साहब वेझो बखराणी बिरादरी के बिंदुन में कार ए तकरार तां जेड़ो बजण कतल औरत जख्मी मकतूलन में अब्दुल जब्बार ए आगा असदुल्ला बखराणी शामिल औरत मारवी जख्मी थी पई घोटकी वेझो गोठानो नादर सुंदरानी हथियारबंदन हथा कतल थी वयो मकतूल के वारसन जो घोटा धुरते गोठाने के मारण जो इल्जाम कार्रवाई जो मुतालबो पुलिस पारा कुछ मानू के हिरासत में वठण की दावा
1: जेकर 28 तरमीम ने सिंध के तकसीम करने की गाल है तो जयू आप कें भी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार न है मुल्क के भलाई के लिए अवाम के भलाई के लिए मुल्क के मजबूत करने के लिए अवाम के मजबूत करने के पाकिस्तान जयू आवे जरूर गौर कभी लेकिन अजा तुम मसलो हथ में ना आयो इन तबसरो कर कबल अज वक्त हों लेकिन तकसीम कें भी सूरत में जयू आ बर्दाश्त
0: 28 तरमीम में

हिननि जी विरहाङे जी ॻाल्हि थी त क़बूल न कंदासीं, मुल्क ऐं आवाम खे मज़बूत करण लाइ तरमीम आंदी वई त पोइ ॾिठो वेंदो। सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न हूंदो। जेयू अॻवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो चयो आहे त सिंध में बदमनी चोट चढ़ियल आहे, जेसिताईं रियासत जी रिच क़ाइम न थींदी अमुन बहाल न थींदो। एम क्यू एम वफ़ाक़ी बजेट ते वोट ॾियण लाइ अॻूणे गवर्नर कामरान टिसोरी जी बहाली जो शर्त रखी छॾियो। एम क्यू एम अॻवान फारूक सत्तार चयो आहे त कामरान टिसोरी जी बहाली संदन डेडलाइन आहे। वज़ीर आज़म दिल वॾो करे कामरान टिसोरी खे ॿीहर सिंध जे गवर्नर तौरु बहाल करे। सखर जी इक्साब अदालत सूबाई वज़ीर मोहम्मद बख्श महर जी ज़मीननि जा तफ़सील पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। नेब जी दरख़्वास्त ते अदालत ॿुधणी कई। अदालत चयो त सखर ऐं घोटकी ज़िलनि जे कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि में मोहम्मद बख्श महर जी केतिरी ज़मीन आहे, संभालींदड़ केर आहिनि, तफ़सीली रिपोर्ट जमा कराई वञे। मंशियात केस में गिरफ़्तार कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिनकीअ खे पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत खे ॿुधणी मुलतवी करे ईंदड़ ॿुधणीअ ते पिनकीअ खे वीडियो लिंक ज़रिए पेश करण जी इजाज़त ॾियण जी दरख़्वास्त। अदालत दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। गार्डन थाणे ते दाख़िल केस में शामिल ॿिनि जवाबदारनि ज़मानत लाइ अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। जवाबदार सोहेलु रहमान ऐं श्रीशान ज़मानत लाइ दरख़्वास्त दाख़िल कई। पुलिस पारां ज़मानत वारी दरख़्वास्त जी मुख़ालफ़त।

0: घोटकी वे जो लजालुट जो शिकार थियल नारी हूरा चाचड़ 164 जी बयान लाए अदालत में पेश। अदालत बुधनी 4 जून ते मुलतवी करे जवाबदारन के सागे दिए ते पेश करण जे लाए नोटिस जारी करे छड्या। केस में नामजद एक जवाबदार निसार चाचड़ गिरफ्तार थियल, मुश्ताक चाचड़ समेत 3 जवाबदार हिफाजती जमानत ते आहे। कराची जी डिफेंस फेज 8 वारे इलाके में पंजाब के जिले रहीमयाल खान के डीपीओ इरफान समूह के घर में धाड़ो। जवाबदार इरफान समूह के घरबादन के यकमाल बनाए फुरलुट कर बाद फरार थी गया। एसएसपी साउथ मूजिब 4 हथियारबंदन इरफान समूह के घर में दाखिल थी, घरबादन के यकमाल बनाए फुरलुट कई। अधिक जांच जारी है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: Karachi, Hyderabad, Dadu, Dardana, Mirpurkhas, Jacobabad, Nawabshah, Quetta and Chitral. You're listening to the Hot FM Network.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे, हम कहां के सच्चे थे।
1: काहे मिलके बिछड़े थे, आंसुओं में डूबे थे।
2: आंखों से निकला हुआ हर पानी आंसू नहीं होता।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
0: Yeah!

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: स्ट्रेंथ की हो तो आवाज भी स्ट्रेंथ की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
0: Yeah!

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: जेकबाबाद, नवाब शाह, क्वेटा एंड चित्राल। You're listening to the Hot FM Network.

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
0: Yeah!

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अब आप पालन के नए माली साल के बजट में तजवीज़ के शामिल करने की खातिर हू गवादर ए कराची के इस्लामाबाद में हलान चाहन था। इस्लामाबाद के फैसलों को सदाई अवाम के नुकसान थो है। बी पार्टियों गिलगित बल्तिस्तान के भी इस्लामाबाद में हलान चाहन थी। जैसे वफाक कंगाल है तो जीबी आजाद कश्मीर वरी वजात खत्म करे। जीबी के इलाके में चूंड जलसे के खिताब कदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन रावल भुट्टो जरदारी चयू जमायतू बीआईएसपी के सूबन हवाले कर चाहन थी। बीआईएसपी सूबन हवाले थो तो खत्म थी वो आजाद कश्मीर ए बीजी जीपी बाबत फैसला इस्लामाबाद जो बाबू न पर इतना के अवाम के करण घुर्जे। कदें भी कें सिलेक्ट करने लाए नाहे चयो सदाई शफाफ चूंड जो मुतालबो कयो आहे। अवां के फार्म 45 पान सा गड खणी वापस वञणो आहे। फार्म 47 जो बंदोबस्त मां पान कंदुस। उम्मीद आहे इन भेरे असांजी का सीट चोरी न थींदी। खिते में जारी जंग जे खात्मे वारनि फील्ड मार्शल जे कोशिशुनि जी कामयाबी लाइ अॻु आहियूं। एमक्यूएम मुर्दा सियासत के जीआरण की कोशिश कर रही है। गैस की भी जिम्मेवारी वफाकी हुकूमत की है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेहमद है तो सिंध हुकूमत पानी बहरान बाबत इरसा के खत लिखी चुकी है। सूबे में पानी खोट जो असर कराची ते भी पवंद। एमक्यूएम सियासत बंद करे। कराची के डिफेंस फेज 8 वाले इलाके में पंजाब के जिले रहीमयार खान के डीपीओ इरफान समूह के घर में धाड़ो। जवाबदार इरफान समूह के घर भातन के यरगमाल बनाए फुल लुटकरण बाद फरार थी व्या। एसएसपी साउथ मूजिब 4 हथियारबंद इरफान समूह के घर में दाखिल थी। घर भातन के यरगमाल बनाए फुल लुट गई। कोटड़ी कबीर में जी झोरींदड़ रोड हादसों कौमी शाहरा ते ट्रालर जो मोटरसाइकिल के टक्कर 4 जना फौत। रसूलाबाद स्टॉप सामू तेज रफ्तार ट्रालर मोटरसाइकिल सवार मथा चढ़ी वयो। हादसे के नतीजे में एक ही घर जा 4 भाती फौत थे। फौतिन में मसमात सोट शहर सिकंदर शहर अली नवाज ए गुलाम रहबर शामिल।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: Karachi, Hyderabad, Dabu, Dhaka, Sipurka, Jacobabad, Nawabshah, Quetta, and Chitral. You're listening to the Hot FM Network.